0: Naira 101.9 FM Rale Dharam. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Naira me kho jao Pakka
1: Desi. Hey guys, welcome back. Okay, I was just kind of doing that setting for the background noise, but welcome back. आज की शाम है आपकी, मेरे नाम, मेरा नाम है ज्योति एंड मैं हूँ यहाँ पे लाइव शो पे एट रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM. चलिए आज का शो किस चीज से शुरू करते हैं. एक्चुअली व्हेन आई वाज ड्राइविंग ओवर हियर एट द स्टेशन, रास्ते में एक एग्जिट नहीं ले पाई, थोड़ा लंबा घूम के आना पड़ा बिकॉज एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट था एंड एग्जिट बंद थी. सो थोड़ा सा मूड खराब हो गया देखकर. सो आज थोड़ा मूड के बारे में बात करते हैं. मूड खराब हो जाता है, कुछ अजीब सा लगता है, राइट? एक चीज होती है बॉलीवुड में विच इज कॉल्ड मूड थेरेपी. मैंने खुद बनाई है. एनीवे, मूड म्यूजिक. सो जी, ये जो मूड होता है ना बॉलीवुड में, सो मूड थेरेपी इक्वल्स टू म्यूजिक थेरेपी. सो बेसिकली यू डू वट एवर, बट थोड़ा सा आज हटके शो करते हैं, बट वी विल ट्राई टू फिक्स इफ यू आर इन अ डिफरेंट मूड थ्रू द म्यूजिक थेरेपी विद द बॉलीवुड. सो ये सिर्फ गाने सुनने का शो नहीं है. सो ये उन गानों के साथ अपने आप से मिलने का शो है. सो आपने कभी सोचा है, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द मूड, कि कभी ऐसा हो कि दिल में बहुत कुछ होता है पर समझ में नहीं आता हाउ डू वी आर्टिकुलेट दैट. कुछ वर्ड्स नहीं मिलते हैं, कुछ थॉट्स एकदम से इकट्ठे नहीं होते हैं बिकॉज थॉट्स आर ऑल ओवर द प्लेस. सो योर थॉट्स आर लाइक गोइंग फ्रॉम zigzag ऑल ओवर द प्लेस. यू डोंट नो, लाइक एक जगह तो ठहरते नहीं है. और फिर एक गाना ऐसा बजता है और ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, ये गाना तो मेरे बारे में ही बात कर रहा है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज माय स्टोरी. सो आज के नेक्स्ट 2 आवर्स, 5 से 7 बजे तक जो आपने मुझे दिए हैं ये शाम, सो मैं आपके साथ रहूंगी. और थोड़ा थोड़ा जो आप, यू नो, सम ऑफ यू आर स्ट्रेस्ड और इमोशनल, थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि यू नो ब्रेक कैसे लें इन मूड स्विंग से, इन मूड से. क्या म्यूजिक थेरेपी फ्रॉम बॉलीवुड कैन हेल्प अस? कैसे हेल्प करता है? इवन इफ इट इज़ नॉट बॉलीवुड, इट कैन बी एनी हॉलीवुड, टॉलीवुड, इट कैन बी एनीथिंग, बॉलीवुड. सो शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि हाउ मच इट हेल्प्स यू. बट दैट वुड बी आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट वी गोना जस्ट ट्राई टू यूज द म्यूजिक थेरेपी टू चेंज आवर मूड्स एंड टॉक अबाउट मूड्स अ लिटिल बिट हियर एंड देयर. ऑलराइट, सो आर यू गाइज विद मी? Let's get started. I'm just taking a deep breath and we'll get started and I am going to play these lovely numbers and let's see. Stay tuned. Don't go anywhere. We have to talk a lot today.

0: Going through a bad phase in life? Facing family stress, business worries, money issues, love problems or relationship challenges? Don't wait. Take action today. Pandit Mahindra, Indian psychic and spiritual healer, offers powerful guidance through palm reading, face reading and date of birth analysis. Get support for love and relationship issues, family problems, business and financial concerns, marriage challenges, enemy problems, bad luck removal, jealousy and curse removal, evil spirit cleansing and complete spiritual healing. Pandit Mahindra also offers all types of pujas, Lakshmi Puja, Graha Shanti and house protection rituals. Call 704-622-3391 today or email ganeshgurujiguruji@gmail.com. Your solution starts today with Pandit Mahindra, bringing clarity, protection and positive energy into your life.
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: पार्टी की भीड़ भाड़ के
3: उप्स, एक्सीडेंट्स होते हैं, पता तो है। मेरे साथ रहते हो तो ऐश करोगे, एक्सीडेंट्स भी होते रहेंगे। एनीवे, वेलकम बैक गाइस, मैं हूं ज्योति, आपकी दोस्त और होस्ट, एंड ये है लाइव शो 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, ओनली ऑन रेडियो नायरा। सो हम बात कर रहे थे मूड थेरेपी की, एंड पंडित महेंद्रा वाला जो अभी आपने सुना है, इज परफेक्ट आई थिंक फॉर दैट वन। इफ यू गाइज वॉन्ट टू डीप डाइव इन टू योर वाई मी क्वेश्चंस और मैं कैसे ठीक करूं, अगर म्यूजिक थेरेपी से काम नहीं चलता, वैसे तो आई बिलीव इन नेचुरल थिंग्स, सो आई होप यू गाइज लाइक दोज सॉन्ग्स। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू गाइज नो देर इज गोना बी अ सॉकर मैच। सो दैट सॉकर गेम टुमारो इज बिटवीन नॉर्थ कैरोलिना करेज वर्सेज कैंसर सिटी। It will start at 6:30 PM tomorrow at First Horizon Stadium at Wake Med Soccer Park, Kerry. If you guys interested and want maybe one free ticket, which will cover, you know, members of four in your family, give me a call, talk to me. वो जैसे फोन आइकन नहीं होता है, हाथ से करते हैं with the little finger and thumb going up. Talk to me, call me 919-999-8595 and we can talk a little bit on the mood therapy, and you never know, you might get that free ticket. But let me know soon, because I have somebody who is literally dancing on my head and she's telling me that you need to get me somebody before 6 o'clock. So if you guys are lucky and you call me before 6 o'clock, you got that. But otherwise, it was really nice meeting you. Anyway, chaliye, let's move on, and we are going to talk about emotions, jisse hum sab deal karte hain, and that is because of all the stress that we have. And stress kis baat se aata hai? We have deadlines, we have lot of family work responsibilities, we have, people have a lot of expectations, and we have a lot of expectations from people. सो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, बट डिसअपॉइंटमेंट्स इसलिए होती हैं क्योंकि हमने वो एक्सपेक्टेशन क्रिएट करी, तो तुमने गलती करी। वो याद है विक्रम बेताल शो आता था कि तू बोला और तू बोला और मैं चला। एनीवे, सो द पॉइंट इज कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो। और कभी कभी लगता है जैसे ये डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, दैट दिमाग ना रुक ही नहीं रहा, इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, लाइक आई वाज टेलिंग बिफोर। ऐसे मोमेंट्स में दैट हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, हमें बस ये चाहिए होता है कि यू नो ये थॉट्स थोड़े से थम जाएं, ये जो क्लस्टर चल रहा है दिमाग में, इसको थोड़ा सा रेस्ट मिले। आई नो दैट आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट, यू नो एट नाइट व्हेन आई एम नॉट एबल टू स्लीप एंड बहुत सारा ब्रेन में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, अगर ये हो गया तो उससे ये बात करनी है, वो ये हो जाए, एंड देन आई रियलाइज स्टॉप and sleep. So stop and sleep, and that's all you need to do. आपको कुछ और नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है that you know we need to tell ourselves, and we will talk more about this, that what is the root cause of my mood swing today in this moment, and we can take baby steps on that. Anyway, just make sure that it doesn't hurt you for, you know, in a long term. So, aur lecture thodi der mein, tab tak thode se aur gaane sunte, ho sakta hai ye wo aapka wala gaana ho jo maine next choose kara hai. I just love sometimes old songs, केसरिया इज ग्रेट, अदर्स आर ग्रेट, बट जो मजा होता है ना स्लो एंड स्टेडी सॉन्ग्स में, जैसे ये शाम सितानी जो है भी, क्योंकि ये शाम आप सबकी मेरे नाम है. एंड फिर अगर आपको किसी से ये पूछना हो कि चाय नहीं पिलाई तो क्या हुआ तेरा वादा, चाय क्यों नहीं पिलाई. चलिए और सुनते हैं एंड स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर एंड विल टॉक अ लिटिल बिट मोर. आज थोड़ा लेक्चर देने का दिल है. ऑलराइट डॉक्टर, सून स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर.
4: रास्ते का ये सुनापन कितना अच्छा लग रहा.
5: ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर. वहां सबके सामने देने में संकोच हो रहा था.
4: ये मेरे लिए सबसे अमूल्य भेंट है क्योंकि तुमने मुझे दी. माफ कीजिए, तुम कहेगा आपको.
5: अपने से छोटों को हमेशा तुम ही कहा जाता है, और फिर तुम में जो अपनापन है वो आप में नहीं.
4: आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी है पूनम. अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं. जिससे भी अपनापन मिल जाए वही अपना है.

0: अपनी आंखों से ना देखता तो कभी यकीन ना होता। यही कि आपको हंसना खेलना भी आता।
1: सपने जिद की, इसलिए खेलना पड़ा। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल के इस पागलपन में।
0: पागलपन? खुशी तो मन की तरंग होती है, उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता।
1: कमल बाबू, कविता से मन को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जिस मन को दुर्भाग्य ने और समाज के बंधनों ने कुचल डाला हो, उसे झूठा दिलासा देने से क्या फायदा।
0: आप मन की शक्ति को नहीं जानती। जिस मन में सच्ची भावना हो, लगन हो, वो मेरी अधूरी कविता है।
1: पूरी होकर भी कटी पतंग का भाग्य नहीं बदल सकती।
2: फूल दो ही जगह शोभा देता है, एक भगवान के चरणों में, दूसरा स्त्री के चूड़े में। बीता हुआ जीवन इस झरने की तरह है, उमंग भरा।
1: लेकिन आज,
2: आज आज इस झील की तरह है जो ऊपर से शांत है, लेकिन इसकी गहराइयों में न जाने कितने अरमान मचल रहे हैं। और भी बहुत कुछ है, जैसे जैसे ये फूल जो मुस्कुराहट देते हैं
1: और मुरझा भी जाते हैं,
2: जैसे ये शाम जो मस्ती लुटाती है
1: और रात के अंधेरे में खो जाती है।
2: पूनम, अगर तुम चाहो तो इस रात के अंधेरे से निकल कर आकाश के उजाले को छू सकती हो।
1: छूती है

0: At Triangle's Biryani in Morrisville, we are elevating the art of biryani with unmatched quality and flavor. From the finest hand-picked spices to the freshest vegetables and premium meats, every dish is a masterpiece. Don't miss our signature Kuku Pulav, a culinary delight available with chicken, goat, paneer, shrimp or fresh vegetables. It's fresh, flavorful and exclusive to the East Coast. Start your feast with sizzling appetizers, perfectly paired with your favorite hot drinks. Indulge in a weekday unlimited thali, a bountiful spread available in vegetarian and non-vegetarian options. Unwind with our signature cocktails like Pushpa the Fire, Classic Margarita, Old Fashioned, Negroni or Jungle Bird. Visit us today at 4121 Davis Drive, Morrisville or call 919-377-1029. Triangle's Biryani. Fresh, flavorful, unforgettable.
1: सुनते रहिए रुनहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल
2: एंड मैं हूँ लोकल टू नॉर्थ कैरोलाइनर्स. ऑल राइट कैरोलाइनर्स, हाउ अबाउट दैट. एनीवे, यू गाइस वेलकम बैक एंड आप सुन रहे हैं मुझे ज्योति को. ये शाम है आपकी मेरे नाम At Radio Naira 99.9 FM, HD4 and 101.9 FM, 1490 AM. और हम बात करें मूड की. जितना मैं मूड के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ, आई थिंक मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा है कि मेरे में एनर्जी ज़्यादा आ गई है मूड के बारे में बात करने की. किसी ने लिखा है, हमारा बात ना करना अब ज़रूरी है. हमारा बात ना करना अब ज़रूरी है. तेरा मुझसे, मेरा तुझसे अब दूर रहना ही ज़रूरी है. तेरा तेरी दुनिया में वापस चले जाना अब ज़रूरी है. मुझे मेरी नई दुनिया बनाना अब ज़रूरी है. क्योंकि जो कुछ सब बीत चुका है उसको भुलाना अब ज़रूरी है. और हमारा इश्क एक फूल था, अब अफसाना है. तेरा तेरी दुनिया में जाना अब बहुत ज़रूरी है. अच्छा लिखा है ना, मूड ही ख़राब हो जाता सुन के. Maybe, may not be. Anyway, आगे बढ़ते हैं moods पे. तो ये जो songs होते हैं ना, the way they are written, ये शाम मस्तानी और क्या हुआ तेरा वादा, ये इतना इनके जो lyrics पहले होते थे और अभी भी कुछ कुछ songs they are really beautifully composed. They convey the mood so effectively. The composition, the music behind it, the orchestration, less, more, medium. कहीं पे heartbroken scene होता है तो कहीं पे एक बस मदहोश relaxed शाम जो हमने अभी सुना, जहाँ पे it just gives a feeling that मेरे को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है. मैं बस, you know, I don't know how to even say this, but मैं, I'm a Bollywood crazy fan. So याद है वो शोले का डायलॉग, छोड़ दो मुझे वीरू, छोड़ दो, मैं नहीं नाचूंगी. सो बेसिकली द आइडिया इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर इज कि छोड़ दो मुझे वीरू, अकेले छोड़ दो, एंड डोंट टच मी, डोंट डिस्टर्ब मी. आई जस्ट नीड सम स्पेस, आई नीड सम स्पेस सो आई कैन फिक्स माय थॉट्स. एंड द पॉइंट इज दैट कई बारी सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हेन यू से दैट यू नो जस्ट लीव मी, लेट मी बी. They don't understand because out of love, they want to just be around you. They don't want to leave you alone because they know that you're upset. They want to be around you, your kids, you know, anybody in your family. They want to be around you. But aapko lagta hai ki, nahi, I'm just, mere dimag mein kuch aise thoughts chal rahe hain which I need to really kind of figure out. So just chhod do mujhe. But anyway, agar aapne feel aisa kiya hai to ek हल्का सा साइलेंस भी महसूस हुआ होगा, यू ना, कभी लाइक यू आर जस्ट सिटिंग आइडल अपने आप में. थोड़ी एक एक मोमेंट वो आया है कभी दैट यू आर एबल टू गेट दैट मोमेंट, दैट स्पेस, एंड यू विल लाइक, ओ माय गॉड, नाउ आई कैन थिंक. ऐसा हुआ है एंड देन यू फील स्लाइटली लाइटर एंड इट हेल्प्स. एनीवे, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं इस लेक्चर से एंड लेट्स लिसन टू दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड सी हाउ यू गाइज फील फर्दर. ऐ अजनबी तू भी कहीं आवाज दे कहीं से. एंड दूसरा वाला पता है कौन सा? दैट इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स. पुकारता चला मैं मेरे सनम से. चलिए, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो नायरा.

0: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: Hey guys, welcome back. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति और आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 99.9 FM, HD4 and 101.9 FM, 4090 AM. अब तो पक्का पक्का से मुझे याद हो गया, बहुत टाइम लगा था। एनीवे, हम बात करें मूड थेरेपी की। सो आगे बढ़ते हैं। सो जस्ट रिमेंबर द पॉइंटर्स। अब तक जो हमने बातें करी उसमें जस्ट रिमेंबर एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट आपका मूड किस चीज़ की वजह से ख़राब है इन दैट मोमेंट। सो टेक बेबी स्टेप्स एंड ट्राई टू सॉल्व दैट फर्स्ट। डोंट ट्राई टू सॉल्व द इंटायर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, एंड आई प्रॉमिस दैट। अब नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ी सी, किसी ने कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। वेल, ग़ालिब अंकल ने ठीक कहा है। एंड कभी आपका दिल टूटा है? सो दिस इज़ बेसिकली आई एम जस्ट गोना टॉक फॉर दोज हु हैव जस्ट रिसेंटली हार्ट ब्रोकन एंड कुछ हुआ है, या आपने ख़ुद किसी को जाने दिया हो। यू नो, लेट गो ऑफ द पेन बिकॉज इट्स नॉट probably worth it to linger on into that relationship anymore. So heartbreak ka problem ye nahi hai ki wo hurt karta hai, iska problem ye hai ki wo chup chap karta hai. Tab ye nahi samajh mein aata ki whether we should maintain our dignity or and you know let go of that person from our life, because it's gonna really really be crazy emotionally and physically. But or should we just hold on to our emotions and try not to hurt ourselves? कि अगर वो बिल्कुल ही चला गया लाइफ से तो फिर हम क्या करेंगे? Because we are very selfish. Let's be very frank. We are very selfish. We always think about ourselves, right? कि हमारा दिल टूट जाएगा. But I think you should always take a pride in being selfish in terms of taking care of your emotions and not taking care of your emotions. So those are two different things. But we should know exactly that when is a good time for us to move on. Chaliye, ab aise gaane phatafat se sunte hain before it is top of the hour, and you guys let me know if you enjoyed them. And stay tuned.

Myra 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Myra mein kho jao Pakka Desi. Welcome back everyone, this is Jyoti once again live show and aap sun rahe hain mujhe Radio Naira pe 99.9 FM HD4 and 101.9 FM 1490 AM aur ye hai sham aapki mere naam ya meri aapke naam either or perfect. So hum hain aapke saath from 5 to 7 aur aaj baat kar rahe hain hum thode se mood swings ki aur thodi si music therapy ki. So I really like this song, you know, whenever I'm feeling low. This breakup song from Ae Dil Hai Mushkil, oh my God, super motivating. Look, baby, jo bhi tune kiya hai, wo very, very right hai. So that is a fact actually. Jo aapne kiya hai, bahut achha kiya. Jo decision liya, achha liya. If you have decided to move on, that's also good because kuch log zindagi mein aate hain rehne ke liye nahi. They are just there because they are there to change us, our perspective, change the way we think, change the way we are, whether it is physical or mental change, doesn't matter. But healing ka matlab ye nahi hota hai ki aap wo dard bhul jao to bahut hi achhi baat hai actually, but if you are in the process of healing, you should just learn to heal and basically accept that something happened. Just like, you know, pani pi liya, dil toot gaya, चाय पी ली, दिल थोड़ा सा टूट गया, बहुत बुरा लगा, उसने ये बोला, बहुत बुरा लगा, स्नैक्स खा लिए. जस्ट एट सम पॉइंट दैट हीलिंग प्रोसेस शुड लुक लाइक दैट कि दिल टूटा है, कोई बात नहीं, आई एम फाइन, आई एम वेरी स्ट्रांग एंड यू नो थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आई एम वेरी स्ट्रांग. और अगर किसी ने कभी आपको अंडर एस्टिमेट किया है तो यू नो आज नहीं तो कल, स्लो नहीं तो फास्ट. पर एक बात ये ज़रूर याद रखना कि अपना टाइम आएगा, आएगा, ज़रूर आएगा. एंड लेट्स ट्राई टू लव लाइफ, यू नो दैट वी आर ब्लेस्ड विद, यूज़ इट फॉर मोर काइंडनेस. एंड डजेंट मीन कि अगर किसी ने दिल तोड़ा है दैट वो टोटल दैट स्पेसिफिक पॉपुलेशन को हम डिस्कार्ड कर दें लाइफ से, बट जस्ट यूज़ इट फॉर मोर काइंडनेस, बी नाइस. यू कैन ऑलवेज किल द ईविल with your kindness and it actually works, trust me. Bahut try kare, there is no point in being depressed or sad, but because just remember one thing, ye waqt chala gaya to dobara nahi aayega and you're gonna regret this moment, that this moment you could have spent more quality time with people who are around you versus feeling sad and depressed. So anyway, अभी के लिए काफी लेक्चर हो गया, लेट्स जस्ट लिसन टू कि अपना टाइम बॉस कब आएगा.

0: Spices Hut is celebrating 5 amazing years. Thank you, Carrie in Morrisville, for making us your one-stop destination for authentic Indian groceries. From fresh produce and premium spices to halal meats, bakery treats, and specialty items, we bring quality and freshness in every aisle. Feeling hungry? Stop by Desi Bites and enjoy delicious, ready-to-eat Indian meals made with the same freshness and care. Come celebrate with us and taste the difference for yourself. Spices Hut, quality and freshness in every aisle. Visit us today in Carrie or in Morrisville.
1: The North Carolina Courage are back home Saturday, May 2nd, and this match will sell out. Don't miss your chance to see the Courage take on the 2025 NWSL Shield champions, the Kansas City Current, led by Golden Boot winner and MVP Timbo Chavinga. Get there early for FanFest, featuring inflatables, games, and fun for kids of all ages. From great value seats to incredible views, there's something for everyone. But don't wait, tickets are going fast. And remember, there are no ticket fees when you buy online. Secure your seats now at tickets.nccourage.com before they are gone.
2: सुनते रहिए नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल,
3: पक्का देसी पक्का लोकल। और मैं हूँ बैक, आपकी दोस्त, नाम तो सुना होगा, ज्योति, आपकी दोस्त और होस्ट। और आज की शाम आपकी है मेरे नाम। सो हम बात कर रहे थे मूड थेरेपी की, म्यूजिक थेरेपी की, एक्चुअली मूड स्विंग्स विद म्यूजिक थेरेपी। हाउ अबाउट दैट, वो थोड़ा अच्छा साउंड कर रहा ना। एनीवे, सो हम बात कर रहे थे कि यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस, बट देयर इज हेल्प आउटसाइड द हाउस ऑल्सो, दैट यू कैन नॉट फाइंड, इफ यू कैन नॉट फाइंड इनर पीस इनसाइड द हाउस, जस्ट गो आउट। यू कैन ज्वाइन सम क्लब्स लाइक योगा, हीलिंग थेरेपी सेशंस, जुम्बा क्लासेस, जिम क्लासेस एंड मैनी मोर। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि यू नो दे आर जस्ट ऑलवेज आउट, दे वॉन्ट टू ईदर मीट विद फ्रेंड्स, थोड़ी बातें करती हैं, दिल हल्का होता है, चाहे उस टॉपिक पे भी ना करें, राइट? लेकिन थोड़ी बातें करना किसी फ्रेंड से, दोस्त यार से करना बहुत ज़रूरी होता है। और इफ़ यू लाइक रीडिंग, मैंने 3 कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी बुक्स ढूंढी हैं। इफ़ यू गाइस लाइक रीडिंग और लिसनिंग टू सम ऑडियो बुक्स, देर इज़ वन मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, दैट इज़ फ्रॉम डेविड श्वार्ट्ज़, एंड इट टीचेस कॉन्फिडेंस, एम्बिशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग, टॉक्स अबाउट दैट। And it is one of the most influential self-help books ever, is what I have learned. And then there is another one that is called You Can Heal Your Life, and it is by Louisa Hay. It basically presents the idea that mental patterns and beliefs directly influence

0: your tickets now.
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
2: Hey guys, welcome back. Hope aap kahin nahin gaye and you guys are still listening to me. And before we move on, let me just give you some information for those who want to cut through the AI noise. There is an event on May 12th from 8:30 a.m. to 10 p.m. May 12th, 8:30 to 10 p.m. 8:30 morning, 10 p.m. Once again. थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना 8:30 p.m. टू 10 p.m. सो दो घंटे का नहीं है, ढाई घंटे का नहीं है, इट इज़ मोर द होल डे. सो बेसिकली इट्स अ फ्री इवेंट एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय सैम आईटी सॉल्यूशंस एंड दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु आर ईदर स्मॉल बिजनेस ओनर्स और यू वांट टू हैंडल योर ओन मार्केटिंग और यू आर डूइंग दैट एंड सेल्फ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स एंड वांट मोर लीड्स एंड फ्यूअर आवर्स एंड ट्राइड एआई बट यू नो यू नीड अ क्लियर डायरेक्शन. सो द फीचर्ड स्पीकर फॉर दिस वन इज़ रायन W. I don't know the last name. I'm so sorry. But he is basically the director of sales and marketing. Aap log gaye honge rush hour karting mein. I really went. It was really fun. So he's actually director of sales and marketing for rush hour karting. And he is the featured speaker. So don't miss it. Again, it is on May 12th from 8:30 a.m. to 10 p.m. Just so you know, the timing is correct. ओके अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं. अब रियल क्विक रिकैप में ये बताऊंगी कि ये ज़रूरी होता है कि हम लोग भागते रहते हैं कुछ चीज़ों के पीछे. पहले डिप्रेशन की बात करी एंड ऑल, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट वेरी क्विकली अबाउट दोज ऑफ अस

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

सुनते रहिए रुनहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन लाइफ, फेसिंग फैमिली स्ट्रेस, बिजनेस वरीज, मनी इश्यूज, लव प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप चैलेंजेस? डोंट वेट, टेक एक्शन टुडे। Pandit Mahindra, Indian psychic and spiritual healer, offers powerful guidance through palm reading, face reading and date of birth analysis. Get support for love and relationship issues, family problems, business and financial concerns, marriage challenges, enemy problems, bad luck removal, jealousy and curse removal, evil spirit cleansing and complete spiritual healing. Pandit Mahindra also offers all types of pujas, Lakshmi Puja, Graha Shanti and house protection rituals. Call 704-622-3391 today or email ganeshgurujiguruji@gmail.com. Your solution starts today with Pandit Mahindra, bringing clarity, protection and positive energy into your life.
2: सुरभि देसी है और स्टाइल भी। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: your tickets now.
1: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gruha Pravesh India Property Expo in Raleigh. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR, all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 2nd and 3rd May, 4 Points Raleigh Durham Airport. 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: सुनते रहिए नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

सुर भी देसी है और स्टाइल भी। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490 AM.